BFBS कोरकार वीडियो कार्यक्रम में ले हमी चौंग कुदली मार आप अपने कार्यक्रम बाटे बिताले नहीं समय बिना इस सके कुसास रहता सात बजे का लागी आप अपने अमर संगत सात मिनट ने बाकी रहे कुसा ज्यादा ज्यादा ही योटा मीठे गीत पर निबटा पे समय क्या रखने नहीं चु राब शब्द ने हमी कार्यक्रम यू कुदली मार पुली फिरी पेटने नहीं सो सात अपको को कार्यक्रम मोसे ने कुसा आत्मा आप शब्द ने सुनना सकनो रहे सा रा अले लाए बने यू गीत राय कुसा तभी को मार समय रखने नहीं सु प्रकाश तुसरास रा इसे करी मिली ना राय को आवाज मा एंजॉय करने होला रिसम रा आज को बाकी पल तभी को सुबह रोज मोसे ने अपनी बिदा लेनी सु नमस्ते बाय बाय.